नमस्तं नृतापि नमस्तं अथापि नमस्तं त्रिमाने नमस्तं निदाने नमस्तं अगाहि नमस्तं अबाहि नमस्तं त्रिवर्गे नमस्तं सर्गे नमस्तं प्रभोगे नमस्तं सुयोगे नमस्तं अरंगे नमस्तं अपंगे नमस्तं अगम्ये नमस्तस्त्रमे नमस्तं जलात्रे नमस्तं निरात्रे नमस्तं जाते नमस्तं अपाते नमस्तं अमजवे नमस्तस्तजवे देशे नमस्तं अभ्येसे नमस्तं नृतामे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वतापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तं अभेवे नमस्तं जन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौने नमो सर्वभौने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्दे नमोस्तु अबन्दे नमस्तं निर्साके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसुखं नमो सर्वभोगं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो योगयोगे नमो भोगभोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है अत्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूत है अचंज।

अंत है, अबंध है, निर्बूल है, असूल है, अकाल है, अजाल है, अल्लाह है, अजह है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अभूत है, अछूत है, आलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबह है, अगह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर वे एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्य समस्त निदान्य, नमो देव देवे अभेखी अभेवे, नमो काल काले, नमो सर्वपाले, नमो सर्वगौणे, नमो सर्वपहुणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे, समस्ति स्वरूपे प्रभंगी परमाथे, समस्ति में भूते कलंक बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वर परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वर परम सिद्धि, नमो राज राजेश्वर परम वृद्धि, नमो शस्त्र पाणि, नमो वस्त्र माणि, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता, भेखी अभरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वर परम जोगते, नमो नित नारायण क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे।

चल पोगे चल राज टन साजे खल तरमंग लख कर्म सर्वंग दाता सर्वंग याता सर्वंग बाने सर्वंग माने सर्वंग प्राण सर्वंग त्राण सर्वंग भोक्ता सर्वंग जोक्ता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग।

राजाओं राजपालों पांडी बांदी उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बार रंकार रंक कालान कार भूतियांगा पह पंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्पहन काम दुत प्रचंड मित गति अखंड आलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ़ अंडन बाढ़ चाचरी शांत प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं नामे अकामे

कि अचरण प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्मा प्रवाह है कि अचलन अनंग है कि अमितो अपंग है मद पार शांत है प्रसाद।

करुणा कृत है अकृता कृत है तरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता अमृत है अजबा कृत है अमृता अमृत है नरनायक है खलकायक है विश्वंपर है करुणालय है नृपनायक है सर्व पायक है पाप भंजन है अर्गंजन है रिप तापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग पर्यात छंद

रखनहारे साहिब संसहाय प्यारे दीन मंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जुथियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो आदंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो बद कियो।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट की पटपट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब अकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारा है आप अपनी बूझ उचार है तुम सब ही तेरे निरालम जानत वेद वर वालम।

बचाओ भाई। संबत 17 सहस पणिजय अर्थ सहस फुनतीन के हित जय भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर सुतुद्रव ग्रंथ सुधारा।

कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोनी जुनी।

सचो त्यावह जा तुद पावहै गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है,

संत साजन पै सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत ना।

वट तागे अवरा कता लै पाड़ करे बियाहो कड़ कागल दस राहो सुन वेखो लोका एहो वडान।

माफ करने, सरबते का अरदास करने, सही प्यारे मेल जिन्हें मिलया तेरे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला।

गुरसिखा की हर तूर दे हम पापी पी गत पाए तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुरु नानक मिलिया नानक मिलिया आए जाम कंकर मार बिदारियन हर दरगले छड़ाए गुरसिखा नो शाबाश गए हर तुठा मिल मिलाई

का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग। हर का नाम जन की वडयाई, हर के नाम जन शोभा पाई।

जतन करै तो पी सरभंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं होत उहां उस गमन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई।

जय गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम ज्यों किरपन किनरार्थ दाम धन धन ते जन जय घट बस्यो हर नाउ नानक तां काय बल बल जाओ रहत अवर का शवर कमावत।

जे प्रसाद परमगत पावे जे प्रसाद सुख से समावे ऐसा प्रभ त्याग वर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो।

ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर

इच पुनी सरदा सपूरी रव रया सत्संग जूरी जिसका साधन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे।

0: ने पारे सुन के साधु संत प्यारे
1: सुल्तानपुरे तो धरती ते सुल्तानपुरे दी धरती ते सब दूरे।